और दोस्तों हम उनसे मोहब्बत करके और मोहब्बत करके अगर मोहब्बत हो जाते हैं तो क्या होते हैं हमारे यारो, क्या होता है? उसके बाद हम और एक गीत की ओर बढ़ते हैं, वो है तेरी याद दिल से और भुला ना पाए। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता 1966 का, जिसमें मनोज कुमार, माला सिन्हा, हेलेन ने काम किए हैं।

और तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, जब किसी से नफरत हो जाते हैं, झगड़ा हो जाते हैं तो लोग उसके याद भुलाना चाहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो होगा मत कर इतना गुरूर, जो कभी कभी लोग कितने गुरूर करते हैं हमारे दोस्तों अलका याग्निक पंकज उदास की ओर हम चलते हैं। और आओ मिल्क सुना जाए, मूवी का नाम है आदमी खेलो।

दोस्तों मत कर इतना गुरूर। फिल्म के नाम है झनकार अलका यांगनी, पंकज उदास का गाया हुआ सॉन्ग है। इस फिल्म में रीना रॉय और गोविंदा ने काम किए हैं हमारे यारो। उसके बाद हम अगला गीत की ओर बढ़ते हैं। कुछ नए और कुछ पुराने गीतों के बहान प्रोग्राम हमारे चलेंगे। तस्वीर तेरी दिल में, तस्वीर कब लोग दिल में उतारते हैं, ये किसी से बेहद बहुत बेहद दिल से और उससे प्यार करते हैं। नैतिक गिल्लासा जी परमाश्री मोहम्मद रफी का सुपर हिट सॉन्ग देवानंद मालधान सिन्हा का ये सॉन्ग है। आप सुनते रहो।

0: में
1: और तस्वीर तो तेरे दिल में आती ही रहेंगे। आओ नैतिके लता जी परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सुपर हिट सॉन्ग है दोस्तों, तो प्यार भरी गीतों की बहान प्रोग्राम हमारा।

की रूठ आई। और उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या है हमारे यारों, आज हम कुछ लवली सॉन्ग के मूड में हैं। और लवली सॉन्ग कब होता है, जब प्यार बढ़ जाता है। तो हम चलते अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की ओर। अब भी या महिया, अब देखो भैया क्या है।

और आपकी आ जाने से कभी कभी बहार हो जाता है और बहार के बाद में कभी कभी मार भी हो जाता है। ये तो प्यार में चलते हैं हमारे यारो, हमारे सुनने वालों, उसके बाद तो हम चलते हैं और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं, और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं। आओ मिलकर सुना जाए।

दोस्तों, इसके बाद हम और आगे को अपनी प्यार भरी गीतों के बिहार जोंग और प्रोग्राम लेकर चलेंगे।

फाहन इंसान जो पर आज चुन है आप सभी को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। मिले जुले गीतों के साथ मैं आपका सेवा करने वाला हूँ। सुबह लेको कभी शाम लेको

0: हर घड़ी करूं मैं तेरा इंतजार, कभी कभी इंतजार करते करते दिन बीत जाता है और रात भी कट जाता है, फिर भी इंतजार वो इस तरह से रुक जाता है। अखियों से गोली मारे, आप सभी को एक शुभ दिन प्रगट हो।
1: एक्टिव स्किन केयर एक्टिव्स फॉर एन इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन।

जिसका डांस स्टाइल अलादा है दोस्तों, रवीना टंडन के साथ काम किया फिल्म दुल्हे राजा में, उसी फिल्म का सॉन्ग अभी मैंने आपके लिए पेश किया। जान की कसम सच कहते हैं हम, खुशी हो या गम बात लेंगे हम आधे आधे। किशोरदा एंड नाइटिंगेल, लता मंगेशकर दोनों के आवाज़ों में।

बात लेंगे हम आधा आधा, क्या वादा है। मत करो वो वादा जो तूने पूरे न कर सको, मत करो वो वादा जो तूने पूरे न कर सको, मत करो प्यार जो तुम निभा न सको।

तू मेरा हीरो नंबर वन। जब दिन नहीं कटते या रात नहीं गुजरते तो आपको क्या करना है, फाह और हिंदुस्तानी पर चॉइस के लिए अपना रेडियो, और पूरे तरह से आपका दिन कट जाएगा और रात भी गुजर जाएगा। हमको तुमसे हो गया है प्यार, ये बात सही है या नहीं?

0: बोल।
1: हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे क्या करना है, जल्द से जल्द शादी कीजिए, हो न सके कि ये प्यार जो है चिड़िया की तरह उड़ जाए। दोस्तों, किशोरदा, लता मंगेशकर, राफी साहेब और मुकेश, ये चारों जो उन दिनों में बॉलीवुड को हाथ में थमा था, ये चारों के आवाज़ में ये गीत आप अभी सुना, हमको तुमसे हो गया प्यार क्या करे। उसके बाद मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाता है।

मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, क्या समझा नहीं समझा, जरूर समझ गए होगे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबां पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गए। मसीह मोहम्मद रफी की आवाज में साथ आशा जी

आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, जब गीत मैंने सुना तो एक छोटा सा शायर याद हो गया दोस्तों। अंधेरा गया सूरज निकल आया, अंधेरा गया सूरज निकल आया, है बेवफा तूने प्यार मुझसे किया, तूने प्यार मुझसे किया और शायरी उससे कर डाला। क्या बात है।

को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, ये मिर्ची कहाँ लगा, आंखी में या होठ पे या पता नहीं, लेकिन मिर्ची लगा है दोस्तों। अब की बार हम तुम युग से गीत मिलन के गाते रहेंगे। सुनील दत्त नूतन ने काम किया फिल्म मिलन का सॉन्ग नाइटिंगेल लता एंड माइटी मुकेश के आवाज में आप सुनेंगे। सुनील दत्त दोस्तों ये कलाकार फिल्म एक्टर बनने से पहले ये रेडियो पर अनाउंसर का काम करता था।

0: Jouw bezorger staat niet zomaar aan.
1: हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहेंगे.
2: तो हमारे दोस्तों एकदम एकदम एकदम हम चलते हैं अपने कुछ लोकल जोन के बारे में. लोकल जोन की ओर हम चलते हैं. तो लोकल जोन क्या क्या है आओ सुना जाए कोई मेरी प्राणों में.

प्राणों में आखिरी प्राण बस आखिरी एक लोकल सॉन्ग आपको हम आज सुनाएंगे। रिकी ज्यू जरन का है, हमारे यारो हमारे दोस्तों। तो हम और आगे को अपना गीत लेकर चलते हैं, तो हम चलते हैं एक और लोकल सॉन्ग हो जाए और वो है मेरे दिल, यानी कि रोहित चांद का ये सॉन्ग है।

ये एक यानी लोकल सॉन्ग थे आपके हमने सुनाई दिया और हम उसके बाद तो चलते हैं और वो अपने ही देनहाख का है और वो है भैया जॉन मॉकम सिंह का एक सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे और आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों कुछ लोकल सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाएंगे। अभी आपने जॉन मोहकिम सिंह के बारे में सुना है और जॉन मोहकिम सिंह के बाद में अभी हम आप वापस और यानी कि और आगे को लेकर चलेंगे। और यह है अपना मोहम्मद

लो मोर कहनिया, हम आए सूरीनाम तो इस गीत को, और ये चलाए हैं, गाए हैं मोहम्मद शरीफ ई झाक ने, हमारे यारो, हमारे दोस्तों लोकल जोंग हम आप लोग के लिए चलाएंगे। हम चलते हैं और कहाँ चलते हैं, ये कहाँ अनिल भीम की ओर हम चलते हैं, वो भी एक लोकल जोंग है।

और तेरे दुनिया से बहुत मजबूर इंद्रोनील रॉय का ये सॉन्ग है, कुछ लोकल सॉन्ग आज सुनाएंगे हम। चलते हैं किरण केदार की ओर।

फाउंटेन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और दोस्तों जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और आज फिर हम आ गए हैं कुछ पुराने गीतों की संगम बहार लेके। तो फरमाइश श्री मोहम्मद रफी का गाना है, रफी के गाने आपको हम आज कुछ सुनाएंगे। और ढल चुकी शाम एक गम मुस्कुराने के

और खुशी, कुछ पुराने कुछ नए गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। हमारे यारों, हमारे दोस्तों, हम चलते हैं अगला गीत की ओर। हम हमसे मोहब्बत करके कुमार शानू साधना सरगम का ये गीत है।

और तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, जब किसी से नफरत हो जाते हैं, झगड़ा हो जाते हैं, तो लोग उसके याद भुलाना चाहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और होगा मत कर इतना गुरूर, जो कभी कभी लोग कितनी गुरूर करते हैं हमारे दोस्तों। अलका याग्निक पंकज उदास की ओर हम चलते हैं। और आओ मिल्क सुना जाए, मूवी का नाम है आदमी खेलो ना।

जरूर दोस्तों, मत कर इतना गुरूर। फिल्म के नाम है झनकार अलका यांगनी, पंकज उदास का गाया हुआ सॉन्ग है। इस फिल्म में रीना रॉय और गोविंदा ने काम किए हैं हमारे यारो। उसके बाद हम अगला गीत की ओर बढ़ते हैं, कुछ नए और कुछ पुराने गीतों के बहान प्रोग्राम हमारे चलेंगे। तस्वीर तेरी दिल में, तस्वीर कब लोग दिल में उतारते हैं, ये किसी से बेहद बहुत बेहद दिल से और उससे प्यार करते हैं। नैतिक गिल्ला जी परमा श्री मोहम्मद रफी का सुपर हिट सॉन्ग देवानंद मालधान सिन्हा का ये सॉन्ग है, आप सुनते रहो।

0: में
1: और तस्वीर तो तेरे दिल में आती ही रहेंगे। और नैतिक लता जी परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सुपर हिट सॉन्ग है दोस्तों। तो प्यार भरी गीतों की बहान प्रोग्राम हमारा

की रूठ आई। और उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या है हमारे यारों, आज हम कुछ लवली सॉन्ग के मूड में हैं। और लवली सॉन्ग कब होता है, जब प्यार बढ़ जाता है। तो हम चलते अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की ओर, अभी या महिया। अब देखो भैया क्या है,

और आपकी आजानी से कभी कभी बहार हो जाता है और बहार के बाद में कभी कभी मार भी हो जाता है। ये तो प्यार में चलते हैं हमारे यारों, हमारे सुनने वालों, उसके बाद तो हम चलते हैं और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं, और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं। आओ मिलकर सुना जाए।

0: इसके बाद हम और आगे को अपनी प्यार भरी गीतों के बिहार जोन और प्रोग्राम लेकर चलेंगे।
1: आप जहां हो जैसे भी हो जरूर से आपको एक शुभ दिवस यहां से आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से पेश है सुनने वालों। यहां से हमने आपके लिए और चुन के रखी हूं कि पल दो पल का साथ हमारा

द बर्निंग ट्रेन से निकाला गया सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत पल दो पल का साथ हमारा। और सुनने वाले कहते हैं कि मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है।

वन-टू चा-चा-चा, आशा भोसले जी की आवाज में हमने सुने। सुनने वालों, कहते हैं कि मिलते रहना सबसे, मिलते रहना सबसे किसी न किसी बहाने से, मिलते रहना सबसे किसी न किसी बहाने से, रिश्ते मजबूत होते हैं दो पल साथ निभाने से, दो पल साथ बिताने से।

देखो नहीं सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते, सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय समय और इज्जत के।

जब छाए मेरा जादू कोई बच न पाए, ये आशा भोसले जी ने फरमाए हैं। और आप जुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर।

है कि दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। और जो जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या फिर धोखा।

0: film वर्दत उषा उत्तप और बप्पी लहरी की आवाज में हमने सुनने की तू मुझे जान से भी प्यारा है। Het leven is te kort om ruzie te maken en boos te worden. Het leven is te kort om ruzie te maken en boos te worden. Wees dankbaar voor je geluk. Wees dankbaar voor je geluk. Hou van je familie en je vrienden die er altijd voor je zijn. Lach vaker. Hasso, hasso, lach vaker en leef elke dag volop. यादों की छाँव में ख्वाबों की गाँव में तय कर रहा है सफ़र। यादों की छाँव में ख्वाबों की नाव में तय कर रहा है सफ़र कल्पनाओं की नाव गाँव में। सौ ख्वाब है और जिंदगी एक।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें।

लगे ना रे जियरा, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी के ना टूटे लड़ी। नितिन मुकेश और लता जी की आवाज में हमने सुने। फिल्म का नाम क्रांति, जिसे हमने कहा है सुने वालों।